0: अकेले घड़ी घड़ी ड्रामा करती है।
1: राजा तो ठीक है, तुम तब आना जब मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी।
2: Mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas.